0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM
1: 89.
4: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए? AEO पाकिस्तान लाया है आइल्सॉन कंप्यूटर, जहां टेस्टिंग का हर पल होता है. कंफर्टेबल, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री. डेली अवेलेबिलिटी, नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 days. आज ही बुक करें अपना आइल्सॉन कंप्यूटर. AEO पाकिस्तान, पाकिस्तान's मोस्ट ट्रस्टेड आइल्स टेस्ट सेंटर. बुक नाउ एट www.aeo.com.pk.
3: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
5: No talk.
6: Just you
5: and the music.
6: Back to back
5: starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
3: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
4: द ओल्ड कम्यूट इज ब्रोकन. We're just here to help you override it.
5: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
6: A new era begins.
7: City FM 89.
8: You got me going crazy.
9: City FM 89 is now live on WhatsApp.
10: It's so easy.
11: 0314-289-8989.
12: Save, text, voice note or call to get your song played.
11: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
1: City FM 89. You're listening to
13: Non-Stop Hits.

0: the perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 4 p.m.
4: This time check is brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
6: Trending today.
7: Pop star Jennie is back. She's returned with Less Than a Lover, her new all-pop track, moving away from the explosive high-energy choreography of her previous solo hits. The track is out on all platforms.
8: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज
9: अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल
10: वी आर
4: सिटी एफएम 89
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.
11: No talk.
12: No talk.
11: No talk.
12: No talk. No talk.
11: Just you, and the music.
12: And the music.
11: Back to back starts now.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
3: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों, अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी. डाउनलोड द ऐप अभी. अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
4: नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
5: बंद करो ना ढक्कन.
6: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
7: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो,
8: आहा।
7: पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो. अभी पैसे भिजवाओ, मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ अभी. नया अकाउंट भी कल परसों क्यों, अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी. डाउनलोड द ऐप अभी. अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
9: सिटी एफएम 89
1: ऑन द डायल.
10: अ प्लेट दैट इज फुल मे नॉट बी इनफ. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies, affecting their cognition, growth, and future.
11: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media initiative.
1: City
12: FM 89.
1: You're listening to
13: Full Disclosure with Sabah Banu Malik.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30 PM. City FM 89. We're playing the song.
3: PediaSure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
4: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए? AEO पाकिस्तान लाया है आइल्सॉन कंप्यूटर, जहां टेस्टिंग का हर पल होता है. कंफर्टेबल, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री. डेली अवेलेबिलिटी, नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 days. आज ही बुक करें अपना आइल्सॉन कंप्यूटर. AEO पाकिस्तान, पाकिस्तान मोस्ट ट्रस्टेड आइल्स टेस्ट सेंटर. Book now at www.aeo.com.pk.
5: Abhi Bank banata hai aapka aaj. Abhi. Download the app. Abhi. Abhi Bank. Financial freedom for all.
6: Behtareen insurance har waqt aapke saath. Jaise Easy Paisa Insurance Marketplace. 50 se zyada plans. Behtareen coverage. Khaas discounts. Aur sirf 24 ghanton mein claim hasil karne ki sahulat. Khawateen ke liye dedicated plans. Aur 25,000 top doctors se consultation bhi. Abhi Easy Paisa app par Insurance Marketplace explore kare. Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
5: Naya account bhi kal parso kyun? Ab khulwao abhi. Financial freedom for all hoga tabhi jab har faisla होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड द ऐप. अभी अभी बैंक. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
7: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89.
8: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
9: City FM 89 is now live on WhatsApp.
10: It's so easy.
11: 0314-289-8989.
10: Save, text, voice note or call to get your song played.
11: And talk to your favorite artist. Only on City FM 89.
1: City FM 89.
11: You're listening to
12: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
13: No talk. Just you
14: and the music.
13: Back to back
14: starts now.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर, जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
3: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
4: बंद करो ना ढक्कन.
5: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
6: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो, पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो. अभी पैसे भिजवाओ, मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ, अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों, अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड द ऐप अभी. Abhi Bank, financial freedom for all.
0: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 6 p.m.
2: This time check is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Trending today.
5: Pop star Jenny is back. She's returned with Less Than a Lover, her new all-pop track, moving away from the explosive high-energy choreography of her previous solo hits. The track is out on all platforms.
4: City FM 89.
6: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज
7: नाज़रीन ताज़ातरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू
8: बंद करो ना ढक्कन
9: Sweepy Clean, करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
10: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
11: अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल
12: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केटप्लेस 50 से ज्यादा प्लान्स बेहतरीन कवरेज खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केटप्लेस एक्सप्लोर करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
13: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो अभी पैसे भिजवाओ मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों अब खुलवाओ अभी फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल

0: City FM 89.
1: It's 6:30 PM.
2: City FM
3: 89.
4: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
6: अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड द ऐप. अभी अभी बैंक. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
7: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केटप्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केटप्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
8: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय JazzCash.
9: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो, पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो. अभी पैसे भिजवाओ, मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ. अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों, अब खुलवाओ. अभी फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड द ऐप. अभी अभी बैंक. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.

0: song, your song.
1: Only on City FM 89.
2: Pediasure se Iveen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients, including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
3: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
4: Shared bundles, wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi Jazz Cash app se Jazz V5 fantastic bundle lagao. Aur pao 2000 rupaye tak ka behtareen discount. Apne favorite bundles par bade discounts ke liye. Jazz Cash hai na?
3: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
5: Nazreen, taza tareen khabar se aapko aagah karenge ke pure shehar mein phail chuki hai aapke toilet ki badbu.
6: Band karo na dhakkan.
7: Sweepy clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
8: Ghar baithe dil bhar ke shopping karni hai. वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
9: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों अब खुलवाओ अभी फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल

0: song to your song.
1: Only on City FM 89. It's 7 p.m.
2: This time check is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
0: Coming up next.
4: Retro 89.
5: City FM 89.
6: Trending today.
7: Pop star Jenny is back. She's returned with Less Than a Lover, her new all-pop track, moving away from the explosive high-energy choreography of her previous solo hits. The track is out on all platforms.
8: City. Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
9: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
8: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
10: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
11: अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी डाउनलोड द ऐप. अभी अभी बैंक. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
12: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में. बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
3: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
4: Naya account bhi kal parson kyun? Ab khulwao abhi. Financial freedom for all hoga tabhi jab har faisla hoga abhi. Kuch banks aapka kal banate hain. Abhi bank banata hai aapka aaj abhi. Download the app abhi. Abhi bank. Financial freedom for all.
5: IELTS seems difficult. 4 sections. Limited time, high pressure.
6: Listening, reading, writing, speaking.
5: Not with AEO Pakistan.
6: Expert trainers, mock tests, speaking practice, tips and strategies.
5: Learn strategies that actually work.
6: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
5: Reserve your spot now at 0320-346-1147 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
7: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय JazzCash.
8: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो, पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो. अभी पैसे भिजवाओ, मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ अभी. नया अकाउंट भी कल परसों क्यों? अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी. डाउनलोड द ऐप अभी. Abhi Bank, financial freedom for all.
9: You're listening to City FM 89.
10: We're playing your song.
1: You're listening to
11: Retro 89 with Amir Nasir.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 7:30 PM. City FM 89.
3: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients, including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
4: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
5: shared bundles wo bhi discount par subscribe karna to banta hai to bas abhi jazzcash app se jazz v5 fantastic bundle lagao और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
6: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो अभी पैसे भिजवाओ मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों अब खुलवाओ अभी फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल
7: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केटप्लेस 50 से ज्यादा प्लान्स बेहतरीन कवरेज खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केटप्लेस एक्सप्लोर करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
6: अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Pediasure se Iveen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
3: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
4: Taiyar ho apni zindagi ka agla kadam lene ke liye? AEO Pakistan laya hai Alson Computer, jahan testing ka har pal hota hai. Comfortable, smooth aur stress free. Daily availability, nationwide centers aur results bhi mile within just 3 days. Aaj hi book karein apna IELTS on computer, AEO Pakistan, Pakistan's most trusted IELTS test center. Book now at www.aeo.com.pk.
5: Shared bundles, wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi, Jazz Cash app se Jazz V5 Fantastic Bundle lagao. Aur pao 2000 rupay tak ka behtareen discount. Apne favorite bundles par bade discounts ke liye Jazz Cash hai na.
3: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No Frost, no worries.
6: Kya aap jante hain ki umr badhne ke sath hum 24% tak muscle mass kho sakte hain, isliye ensure jisme maujood 25 zaruri vitamins aur minerals rakhe aapki strength aur mobility ko up to the mark. Ensure clinically proven to improve muscle strength in 90 days.
7: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में, बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
8: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों? अब खुलवाओ अभी। फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी। कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी। डाउनलोड द ऐप अभी। अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।

0: 89.9
1: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
2: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो अभी पैसे भिजवाओ मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों अब खुलवाओ अभी फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल
3: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
4: वी आर
5: सिटी FM 89
4: यू आर लिसनिंग टू
6: रेट्रो 89 विद आमिर नसीर

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 p.m. City FM 89. We're playing your song.
3: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
4: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों? अब खुलवाओ अभी। फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी। कुछ बैंक आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज। अभी डाउनलोड दी ऐप, अभी अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
5: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट के लिए जैज कैश है ना।
6: When I grow up, I want to be strong.
7: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
6: I want to learn big things.
7: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
6: I want to be the fastest.
7: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
6: I want to grow up like everyone else.
7: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
8: Nurture today, strengthen tomorrow.
7: Act, a Dawn Media Initiative.
2: City FM 89, we're playing your song.
9: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
10: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
11: A new era begins.
0: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
0: Retro 89 with Amir Nasir.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: City FM 89
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
4: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो, पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो। अभी पैसे भिजवाओ, मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ, अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों, अब खुलवाओ अभी। फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी। कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी। डाउनलोड द ऐप अभी। अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
5: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
4: अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी। डाउनलोड द ऐप अभी। अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
1: सिटी 89,
6: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
7: Attention, the standard commute has been decommissioned.
8: Introducing a system override for your ears.
9: New energy, new perspective.
10: The same 24 hours, but a completely different vibe.
11: Join ABD as he takes over the streets.
12: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
13: your evenings just got an upgrade.
11: The rush hour with ABD.
10: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
13: Tune in or get left behind.
0: City FM 89.
1: You're listening to
14: Retro 89 with Amir Nasir.

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
0: City FM 89.
1: Coming up next.
0: Non-stop hits.
4: City FM 89. We're playing the song.
5: Trending today.
6: Pop star Jennie is back. She's returned with Less Than a Lover, her new all-pop track, moving away from the explosive high-energy choreography of her previous solo hits. The track is out on all platforms.
0: City
7: FM
0: 89.
8: Shared bundles, wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi Jazz Cash app se Jazz V5 fantastic bundle lagao. और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
0: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
9: होल्ड ऑन स्पेशल डिलीवरी कमिंग थ्रू
10: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
11: We're now live on WhatsApp.
12: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
11: It's as easy as 03142-898989.
10: Save our number now and WhatsApp us.
0: Don't adjust your dial.
12: This is
13: City FM 89.
14: No talk. Just you and the music.
13: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 9:30 PM. We are
3: City FM 89.
4: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
3: City FM 89.
5: We are playing your song.
6: Have you saved our WhatsApp number yet?
7: 03142-898989.
6: Get in touch over WhatsApp.
5: City FM 89.
8: You got me going crazy.
1: You're listening to
9: Non-Stop Hits.
10: No talk.
11: Just you
10: and the music.
11: Back to back
10: starts now.

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैज कैश है ना।
2: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में, बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
3: होल्ड ऑन, स्पेशल डिलीवरी कमिंग थ्रू।
4: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
5: We're now live on WhatsApp.
6: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
5: It's as easy as 03142-898989.
4: Save our number now and WhatsApp us.
7: City FM 89. We're playing your song.
8: You're listening to
9: Non-Stop Hits.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: Pop star Jenny is back. She's returned with Less Than a Lover, her new all-pop track, moving away from the explosive high-energy choreography of her previous solo hits. The track is out on all platforms.
7: We are
8: City FM 89.
9: Shared bundles, wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi, Jazz Cash app se Jazz V5 Fantastic Bundle lagao. और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
10: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज़ कैश
11: सिटी एफएम 89 वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
12: व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी स्ट्रांग
13: फॉर मेनी चिल्ड्रन इन पाकिस्तान दैट चांस इज ऑलरेडी स्लिपिंग अवे 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
12: I want to learn big things.
13: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
12: I want to be the fastest.
13: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
12: I want to grow up like everyone else.
13: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
14: Nurture today, strengthen tomorrow.
13: Act, a Dawn Media Initiative.
15: City FM, FM 89.
1: You're listening to
16: Non-Stop Hits.
17: No talk. Just you and the music. Back to back starts now.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
1: City FM 89.
4: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में. बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
5: सिटी एफएम 89.
1: यू आर लिसनिंग टू
6: नॉन स्टॉप हिट्स.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 p.m. City FM 89. We're playing the song.
3: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए. जैस कैश है ना.
4: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
5: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
1: You're listening to
6: Non-Stop Hits.
7: No talk.
8: Just you
7: and the music.
8: Back to back
7: starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
4: सिटी एफएम 89 वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
5: अटेंशन द स्टैंडर्ड कम्यूट हैज बीन डीकमिशनड
6: Introducing a system override for your ears.
7: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
8: Join ABD as he takes over the streets.
7: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
6: your evenings just got an upgrade.
8: The rush hour with ABD.
7: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
6: Tune in or get left behind.
4: You're listening to City FM 89.
0: You're listening to
2: Nonstop Hits.